मन खोलू पूरी तो यंगे दोस्ता रहा सीधा यंगो यंगा की हाँ बेजुरी कॉपी गे गे तो पाला मेरे को नहीं कसनम ते भी तो सीपा दुस्ती रहा मन जो के दिलम